लला भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय, श्री राम जय, जय श्री राम। नमस्ते।

आदाब, ये आकाशवाणी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत है। ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर। इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं YouTube के आराधना चैनल वेव्स के OTT प्लेटफॉर्म पर, और DTH के अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप।

आकाशवाणी सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत करता है और उन सब की सुखद यात्रा की प्रार्थना करता है। अमरनाथ जी यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण में मैं हूं आपकी उद्घोषिका इरम कुरैशी। श्रोताओं, ये विशेष प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होता है। यात्रा से जुड़े सभी अपडेट्स, प्रशासन के सभी निर्देश और मौसम विभाग के सभी पूर्व सूचना आपके साथ हम इस विशेष प्रसारण में पहुंचाते हैं।

जहाँ से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब हमारे साथ जुड़ेंगे और वो आज के अपडेट्स हम तक पहुँचाएंगे। आप सुनते रहिए ये विशेष प्रसारण।

0: यात्री इनमें सवार हैं और ये अभी गांधरबल से निकलकर आगे श्रीनगर की तरफ यहाँ बढ़ रही है, बानहाल की तरफ। तो आज 23वां बेज था और ट्रैफिक जो है, अगर 3 दिन पहले कहेंगे तो हालत खराब थी हाईवे की, तो लेकिन अब पिछले 2 दिन से इसमें इम्प्रूवमेंट आई है और जो ट्रैफिक की मूवमेंट है बगैर किसी खलल के जारी है। और इस वक्त भी जो यात्रा के दोनों काफले हाईवे पर बढ़ रहे हैं, जो बालतल से वापस आ रहा है वो भी, और बाल जो जम्मू से बालतल की तरफ जा रहा है भगवती नगर से, जो आज सुबह 83 गाड़ियां निकली हैं, तो यह भी रामबन डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुकी हैं और कुछ वक्त के बाद ये बानहाल पहुंचकर यहाँ पर इनका विश्राम होगा, कुछ टाइम के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह होता है, तो उसके बाद इन्हें कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले किया जाएगा। तो दूसरा जो बाकी ट्रैफिक है, जम्मू से 7 बजे से ट्रैफिक को नगरोटा से जो वहां पर टाइमिंग रखी गई है, जो ट्रैफिक एडवाइजरी रोज जारी की जाती है,
1: जी
0: 7 बजे से 12 बजे तक जम्मू से जो भी गाड़ियां होंगी, जो पैसेंजर गाड़ियां होंगी, उनको कश्मीर की तरफ आने की इजाजत होगी। इसी तरह उधमपुर से सुबह 8 बजे से 1 बजे तक इनको कश्मीर की तरफ आने की इजाजत होगी। उसके बाद जो टूरिस्ट और जो अनरजिस्टर्ड यात्रियों की गाड़ियां होंगी, उन्हें 2 बजे के बाद रामबन से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं होगी, और 3 बजे के बाद बानहाल से

0: श्री अमरनाथ 2026 के इस विशेष प्रसारण में बारी है हमारे एक और संवाददाता से जुड़ने की। जी दोस्तों, हमारे साथ जम्मू से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और क्या कुछ अपडेट्स हैं आज के भगवती नगर बेस कैंप से? हमारे 1795 तीर्थयात्री जो आज रवाना हुए हैं वहाँ से, उनके बारे में अपडेट्स जो हैं वो हम जावेद से लेंगे। जी जावेद।
1: जी, पवित्र श्री अमरनाथ जी की तीर्थ यात्रा का पर्व यहाँ जम्मू के पहले निवास स्थान भगवती नगर से जारी है। तीर्थयात्रियों का बाबा बर्फानी के द्वार की तरफ रवाना होना जहाँ जारी है, वहीं बराबर दर्शन कर वापस आ रहे तीर्थयात्री भी लगातार जम्मू पहुंच रहे हैं। हालांकि यहाँ जम्मू में आज भी मौसम अबरालू रहा, कल भी हल्की बारिशें रही और आज भी हल्की हल्की बारिशें कहीं कहीं हो रही है, लेकिन खासतौर पर आज मौसम विभाग ने

0: वो वाकई काबिले तारीफ है। और लगातार तीर्थ यात्री जो है वो बाबा बर्फानी की इस तीर्थ यात्रा में हिस्सा लेकर घाटी भी पहुंच रहे हैं और वहां से रवाना वापस होकर यहाँ जम्मू भी पहुंच रहे हैं, और ये सिलसिला लगातार जारी है। आज भी अपनी हाजिरी बाबा बर्फानी के द्वार पर दिए जाने के बाद अभी जम्मू पहुंच रहे श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 1943 है, जिसमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे, साधु साध्वी शामिल हैं। लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए तीर्थ यात्री यहाँ जम्मू के रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, जिससे यहाँ शुरू हुए तीर्थ यात्रा का ये समागम जोश और जज्बे के साथ बराबर जारी है।
1: जी जावेद, आपका

0: जी श्रोता, आप हमारे साथ फोन लाइंस के जरिए जुड़ रहे हैं। हमारे एक और संवाददाता इस तारिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं पहलगाम से। नुनवन बेस कैंप के हाल जानेंगे तारिक से। जी तारिक।
1: सबसे पहले विशेष प्रसारण के सभी

0: सौ नवासी महिलाएं शामिल है। 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान कल मजीद 6,165 शिव भक्तों ने श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में दर्शन किए। इसके साथ ही यात्रा के आगाज से अब तक दर्शन करने वाले कुल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 4,41,577 हो गई है। इधर पहलगाम के लुनवराधार शिवर, शिशनाग और महेश्वरनी शिविरों में इस समय कोई भी श्रद्धालु मौजूद नहीं है। अलबत्ता यात्रा मार्ग और सभी हजार शिविरों पर विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी श्रद्धालुओं की सेवा के लिए हर समय मौजूद है। जी
1: जी तारिक, तो क्या कुछ अभी और वक्त लगेगा पहलगाम के पारंपरिक मार्ग से यात्रा को वापस बहाल होने में?
0: दरअसल यात्रा जो कुछ दिनों से लगातार हल्की सी बारिशें, हल्की कई धीमी बारिशें हुई, तो इस चीज से कि थोड़ी सी रुकावट बनी हुई है यात्रा ट्रैक में, लेकिन फिर भी

441,577 तीर्थ यात्रियों ने फिलहाल इन 28 दिनों में बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन किए और वहाँ जाके उन्होंने माथा टेका। और आज भी ये संख्या ऑब्वियसली बढ़ने वाली है, क्योंकि आज भी तीर्थयात्री जो है बालतल के मार्ग से पवित्र गुफा जा रहे हैं और वहाँ बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं। जी श्रोताओं, इस विशेष प्रसारण को आप सुनते हैं FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस विशेष प्रसारण में हम आप तक तीर्थ यात्रा से जुड़े सभी अपडेट्स पहुंचाते हैं, हमारे संवाददाताओं से जुड़ते हैं जो कि अलग अलग यात्रा ट्रैक्स पर ट्रांजिट कैंप्स में तैनात हैं, वहाँ

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कारावास का प्रावधान। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके

गृह मंत्री अमित शाह ने ये विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपने संदेश में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस विधेयक से परीक्षा में होने वाली धांधली से निपटने के लिए एक सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के तंत्र को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक

0: की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
1: अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गयी। शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना

0: के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1 अरब 50 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रवारी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और ये सीट छोड़ने के बाद कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी 164 मतदान केंद्रों के 422 बूथों पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर इस बार कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जहां कुल 3 लाख

0: और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। उपचुनाव में एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई है, वहीं जनसुराज भी इस चुनाव में जीत के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से पैदा अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की अनिश्चितता और लाल सागर संकट शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत

0: ने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के CEO विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादुगावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल मोरसिंगानखत ने

0: पदक जीत कर रचा है इतिहास, और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। लोकसभा पासेस एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल विथ स्ट्रिक्टर पनिशमेंट ऑफ अप टू 10 इयर्स इन जेल। पोलिंग बिगिंस फॉर बाय इलेक्शंस टू 3 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन बिहार, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। Bihar government decides to reopen closed sugar mills at Rayam in Darbhanga and Sakri in Madhubani. India's merchandise exports rise 15% despite Red Sea crisis and global turmoil. Annual Kanwad Yatra for Shravana month to begin today.

अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें इम्तिहानात के दौरान गलत तौर तरीकों की रोकथाम के लिए सख्त सजाओं और फास्ट ट्रैक अदालतों के क्याम की तजवीज़ है। ये बिल पब्लिक इम्तिहानात के दौरान गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक कानून 2024 में तरमीम करेगा। पब्लिक इम्तिहानात के दौरान गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक बिल 2026 में कई अहम गुंजाइश

रबारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां से बीजेपी के रुकन असेंबली योगेश पटेल के इंतकाल के सबब जिमनी चुनाव जरूरी हो गया था। इंतखाबी कमीशन ने 100% वेबकास्टिंग, पोलिंग मराकज के बाहर मोबाइल फोन जमा कराने के काउंटर्स और ऑनलाइन जाब्ते अमल से मुतालिक शिकायतों के लिए सी विजिल सहूलतें मुतारिफ कराई हैं। मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती को नाअहल करार दिए जाने के बाद दतिया सीट खाली हो गई थी। दतिया असेंबली हलके से चुनाव के लिए सभी 291 पोलिंग स्टेशनों पर खसूसी इकदाम किए

0: की पेशगोई की है। महानदी में दरमियानी दर्जे के सैलाब का खदशा है और कई नदियों के तास पर गहरी नज़र रखी जा रही है। इंतजामिया ने राहत और तैयारी से मुतालिक इकदाम तेज़ कर दिए हैं। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि भद्रक सबसे ज़्यादा मुतासर ज़िला बना हुआ है, जहाँ हुकाम ने शदीद खतरात वाले इलाके के लोगों से अपील की है कि वह नामजद करदा राहत कैंपों से बाहर न जाएँ। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ओडिशा में भद्रक जिला सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां जिले के 5 ब्लॉक्स में 322 गांव सैलाब के पानी में डूब गए हैं। पड़ोसी जिले जाजपुर में लबरेज हो चुकी बैतरानी और कानी नदियों ने रोजमर्रा की जिंदगी को शदीद तौर से मुतासिर किया है, जिससे नशेबी इलाकों में पानी भर गया है। महानदी के बलाई इलाकों में लगातार बारिश की वजह से सतहआब में इजाफा हो रहा है, जिससे दरमियानी दर्जे के सैलाब और नदी के तास में पानी भर जाने का खदशा है। इस दौरान भारत के महकमा मौसमियात ने नौपाड़ा, कालाहांडी, नबरंगपुर और कोरापुट जिलों में आज शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि देकर 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भद्रक, कालाहांडी और नबरंगपुर में एहतियाती कदम के तौर पर तालीमी इदारों को बंद रखा गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: केरलम के 3 जिलों में बहुत शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: शुमाली केरलम में कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके

0: ने सोने का तमगा जीतने के लिए 10.71 सेकेंड में बेहतरीन रिकॉर्ड कायम किया, जबकि बासिल ने दौड़ के सख्त मुकाबले में कांस्य का तमगा जीता और 10.83 सेकेंड में अपनी दौड़ मुकम्मल की। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक।
1: शुक्रिया जमीर। लोकसभा में पेपर लीक रोकथाम बिल मंजूर होने को राजधानी से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने अपनी बड़ी खबर बनाया है। बकौल रोजनामा इनकलाब

0: बालतल के मार्ग से हमारे साथ जुड़ते हैं रहीम रिजवान। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट्स हैं आज वहां से। जी रहीम
1: जी, सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को मौसम की स्थिति के बारे में बताना चाहते हैं। तो श्रोताओं, बादल के पूरे क्षेत्र में आज मौसम सुहाना है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इन ताजा हवाओं का आनंद लेते हुए बाबा बर्फानी के भक्त गुफा की ओर रवाना हो रहे हैं। आज सुबह 3 बजे से ही गुमेल कंट्रोल गेट पर बाबा बर्फानी के भक्त लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते हैं और RFID कार्ड हासिल करने के बाद ऊंचे पर्वतों के बीच वो गुफा की ओर प्रस्थान हो रहे हैं। इस दौरान आज सुबह सवेरे 5,136 श्रद्धालु बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा की ओर रवाना हुए। जुमेल कंट्रोल गेट पार करने वाले इन श्रद्धालुओं में 3,701 पुरुष, 1,160 महिलाएं, 126 बालक बालिका, 22 साधु, 10 साधियां, 5 ट्रांसजेंडर एवं 112 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। हर हर महादेव का पवित्र नाम

कंपेयर करें तो 14 किलोमीटर का लंबा ये रास्ता ऊंचे पर्वतों के बीच कठिन चढ़ाई होती है। और जब आप कठिन चढ़ाई करते हैं पैदल पोनियों पर या पिट्ठुओं पर सवार होकर जब आप ऊपर जाते हैं तो कभी कभी ऑक्सीजन की कमी कई सारे तीर्थयात्रियों में देखी जाती है। तो उसके लिए हमारे प्रशासन ने जगह जगह चिकित्सा की सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध कराई गई हैं। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत महसूस हो रही है तो आपके आस

सर मैं बसारत गुल। लोकसभा ने पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतलिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दी है। इस बिल में मुजरिमों को 10 साल तक कैद की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और सजायाफ्त अफराद की जायदाद जब्त करने की सिफारिश की गई है। इस कानून के तहत सभी रियासती हुकूमतें और मरकज के ज़ेर इंतजामी इलाकों की इंतजामिया खसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करेगी ताकि मुकदमात की रोजाना समाप्त हो सके। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जानिब से UGC यूनिवर्सिटी दर्जाबंदी जवाबित के तहत बावकार जुमरे में पहला मकाम अता किए जाने पर कश्मीर यूनिवर्सिटी को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला ने इस कामयाबी को जम्मू कश्मीर में आला तालीम के शोबे के लिए एक तारीखी संग मेला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यह कामयाबी उन असातिज़ा मुहक्किकीन दानिश्वरों और तालिबे इल्मों की मेहनत और अज़्म का नतीजा है जिन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी को मुल्क के मुमताज तालीमी इदारों में नुमाया मकाम दिलाने में अहम किरदार अदा किया है। काबीना वजीर सतीश शर्मा ने एक मीटिंग के दौरान खुराक व सिविल सप्लाईज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमों की कारगुजारी

फिल्म में मेले IFFJK में शिरकत करने और फिल्में दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट के तहत रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर की मोबाइल पासपोर्ट वैन कल यानी 31 जुलाई तक सियाती सहूलत मरकज बुमथंग करगिल में मौजूद रहेगी। और अब दर्जे हरारत, श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.2 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज़।

0: श्यामन्ना जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओं, हम हमारे संवाददाताओं से फ़ोन लाइंस के ज़रिए जुड़ते हैं और अब बारी है हमारे श्रीनगर के संवाददाता से जुड़ने की। फ़ोन लाइंस पे हमारे साथ पांता चौक ट्रांजिट कैंप से जुड़ रहे हैं इमरान नायकू, वहाँ से जुड़े अपडेट्स सुनते हैं इमरान से। जी इमरान
1: जी, बहुत शुक्रिया। जैसा कि अमरनाथ जी यात्रा 2026 जारी है और आज श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप से अमरनाथ जी यात्रियों को सुबह बालतल पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रास्ते से रवाना किया गया और कॉन्वॉय

पॉइंट्स को मॉनिटर यहाँ से किया जा रहा है। और इवन की जो पवित्र गुफा का जो ट्रैक है, वो चाहे पहलगाम का ट्रैक हो या फिर बालतल ट्रैक हो, दोनों ट्रैक्स पर इस IEEE के जरिए से मॉनिटर किया जा रहा है। और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि यात्रा काफी पीसफुल तरीके से अभी जारी है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से भी यात्रियों को एक तरफ जहाँ अरेंजमेंट्स को लेके सारी चीजें सामने रखी गई है, वहीं हमारी रेगुलरली अमरनाथ जी यात्रियों से बात हो रही है और हम यात्रियों से उनका फीडबैक हासिल कर रहे हैं कि यात्रा को लेके अभी तक जहाँ जहाँ वो पहुंचे हैं, जहाँ वो गए हैं, जिन ट्रांजिट कैंप्स में रुके हैं, या जो यात्री पवित्र गुफा का दर्शन करके वापस आए, तो सबसे हमारी बात हो रही है। और

बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में जाके माथा टेका और वहाँ के पवित्र शिवलिंग के दर्शन किए, जिनमें 495 पुरुष हैं, 246 महिलाएं, 22 बालक एवं बालिकाएं, 3 साधु और 43 सुरक्षाकर्मी भी शामिल। श्रोताओं, आपको ये बता दें कि हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं वो हम

सकते हैं और हमारी पूरी इंसानियत के लिए जो है प्रार्थना भी करते हैं। श्रोताओ, अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस विशेष प्रसारण के बारे में आपका कोई सुझाव हो या कोई आप बात हम तक पहुंचाना चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें मैसेज भी कर सकते हैं और

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमें डीटीएच पर सुन रहे हैं। हम उपलब्ध हैं वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब की आराधना चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, ये विशेष प्रसारण प्रतिदिन आप सुनते हैं सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। इस विशेष प्रसारण के जरिए हम कोशिश करते हैं कि अमरनाथ जी यात्रा से जुड़े सभी अपडेट्स आप तक

का है, 426 महिलाएं हैं, 37 बालक एवं बालिकाएं हैं, 9 साधु और 33 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। ये संख्या है उन यात्रियों की जिन्होंने आज सुबह 10 बजे तक पवित्र गुफा में जाके माथा टेका, वहाँ पे जाके शिवलिंगम के दर्शन किए और अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाई। जी हाँ श्रोताओं, आपको बता दे चले कि आप ये विशेष प्रसारण सुन पा रहे हैं और इस विशेष प्रसारण के ज़रिए हम आप तक यात्रा से जुड़े सभी अपडेट्स पहुंचाते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे एकमात्र फ़ोन नंबर से। फ़ोन नंबर है 9596990954। इस फ़ोन नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपकी अगर कोई राय है इस प्रसारण के रिलेटेड तो आप वो हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस

तो आप तत्काल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद अपनी टर्न का इंतज़ार करें। बाबा भोले का जब आपको बुलावा आएगा तब आप बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए वहाँ जाएंगे और बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त करके अपनी मनोकामना पूरी कराएंगे। श्रोताओं, सुबह 10 बजे तक के आंकड़े आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सुबह 10 बजे तक 1400

0: rose 9 points to 77,663, while the Nifty added 6 points to 24,257 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: श्यामाना जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन पा रहे हैं बालतल से एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा, पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब की आराधना चैनल और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का आज 28वां दिन है और आज तीर्थ यात्रियों को सिर्फ बालतल के मार्ग से आगे जाने की अनुमति दी जा रही है, क्योंकि पारंपरिक पहलगाम मार्ग पर अभी

आपकी उम्र 13 से 70 साल के बीच ही होनी चाहिए। 13 साल से कम उम्र के बच्चों को और 70 वर्ष से ज़्यादा लोगों को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट होना भी अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन फीस 220 रुपये

0: इसके अलावा आप हमें DTH के आराधना सर्विस और YouTube के आराधना चैनल के अलावा भी वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात

अनुमति दी जाएगी। जी हाँ श्रोताओं, आज ऐसे तीर्थयात्री जिन्होंने बादल के मार्ग से आगे दुमेल कंट्रोल गेट को पार किया, उनकी संख्या 5136 है, जिन्होंने दुमेल एक्सेस कंट्रोल गेट पर RFID कार्ड्स हासिल करके वो आगे चले, और उनमें से 3114 तीर्थयात्री ऐसे जो बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में माथा टेक के अभी वापस बालतल के मार्ग पर पहुंचे हैं। श्रोताओं, बालतल के मार्ग से जाने वाले यात्री जो हैं उन्हें 14 किलोमीटर

0: चाहते सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के गोला बारूद के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और बी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल

0: खबरें तो बाद।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं कलीम अहमद। राज्यसभा में पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर बहस होगी, जिसका मकसद पेपर लीक के कसूरवारों के लिए सख्त कानून बनाना है। मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोर शराबे के सबब लोकसभा की कार्रवाई में रुकावट पैदा हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से दिल्ली में तलबा के एहतजाज के दौरान RAF की जानिब से इस्तेमाल गोली बारूद की तफसीलात को

0: रुकावट पैदा करना पार्लियामानी रिवायात के मुताबिक नहीं है।
1: 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में श्री दिलीप गावित ने स्वर्ण तथा श्री मोहम्मद बासिल ने रजत पद जीता है। श्री मुरली शंकर ने रजत पद जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ।
0: शोरगुल जारी।

कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। इस कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी तादाद में अकीदतमंद गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री जाते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हुकूमतों ने बड़ी तादाद में अकीदतमंदों के लिए वसी तर इंतजाम किए हैं। मरकजी वजीर दाखिला और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज श्रावण के पवित्र महीने के आगाज पर लोगों को मुबारकबाद दी है। भारत के महकमे मौसमियात ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और मगरबी मध्य प्रदेश में आज शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, केरला, माहे और राजस्थान में अगले दो दिन के दौरान गरज चमक के साथ तेज से बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। कर्नाटक के साहिली और जनूबी अंदरूनी इलाके, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में कल तक इसी तरह के हालात बने रहने का इम्कान है। इस दौरान पंजाब, ज़ैली हिमालय, मगरबी बंगाल और सिक्किम में भी तेज से बहुत तेज बारिश का इम्कान है। आईएमडी ने शुमाल मशरकी भारत में अगले दो से तीन दिन तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान कौमी

0: म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिलर सतीश पटेल, वाइल कांग्रेस हैज नॉमिनेटेड इट्स गुजरात वाइस प्रेसिडेंट भीखाभाई रबारी। ओवर 2,19,000 वोटर्स विल डिसाइड द इलेक्टोरल आउटकम बिटवीन द टू कैंडिडेट्स। द बाई पोल्स वर नेसेसिएटेड ड्यू टू द डेथ ऑफ लॉन्ग टाइम बीजेपी एमएलए योगेश पटेल, हु हैड रिप्रेजेंटेड दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी मल्टीपल टाइम्स। इलेक्शन कमीशन हैज इंश्योर्ड इलेबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। स्पेशल फैसिलिटीज सच एज व्हीलचेयर रैम्प्स एंड वॉलेंटियर्स हैव ऑल्सो बीन अरेंज फॉर द डिफरेंट लेबल वोटर्स एंड सीनियर सिटीजन्स अबोव 85 ईयर्स ऑफ एज। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी न्यूज, अहमदाबाद।
1: इन दतिया इन मध्य प्रदेश वोटर टर्न

0: मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
2: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
1: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष

कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए। साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में तीन निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और

0: टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी, किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
1: ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ की बदलती स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
2: लगातार बारिश की सबसे ज्यादा मार 5 जिलों बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और केंदुझर पर पड़ी है। लगभग 5,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 1,76,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए 3 दिनों के भीतर नुकसान का विस्तृत ब्यौरा सौंपे। इस बीच ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे

0: इसके जवाब में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीकी कमांड के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके समर्थित समूहों से अमरीकी सैनिकों, वाणिज्यिक जहाजों तथा खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों को होने वाले खतरों को कम करना है। इस बीच ईरान के खुजेस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से पाकिस्तानी बलों द्वारा घातक गोलीबारी की घटनाओं में हस्तक्षेप करने की अपील की है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है।

इसके साथ साथ आप याद रखें कि पूरे जम्मू कश्मीर में पॉलिथीन बैग्स पर मुकम्मल बैन है, इसलिए इको फ्रेंडली जो है वही बैग्स वगैरह जो है उनका ही इस्तेमाल आप करिए। तो श्रोताओं, सुरक्षित रहिए, जो ये नियम है इनका पालन करिए और अपनी यात्रा को यादगार बनाइए।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, पहाड़ों में बदलते मौसम और यात्रियों के नए जत्थे की क्या है ताजा स्थिति जानने के लिए सीधे चलते हैं जम्मू के भगवती नगर, जहां से हमारे संवाददाता जावेद मेहरा अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जावेद
1: जी, जम्मू में आज यहाँ एक तरफ बादल है तो कहीं धूप भी अपना पूरा असर दिखा रही है।

बनाया जाए, बल्कि तमाम जिला हेडक्वार्टर्स या जो राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी है या बालटाल मैनेजमेंट के साथ संपर्क चारों तरफ जो होता है वो एक पूरा होता है, और संपर्क के साथ अनुमति भी दी जाती है। और ये फैसला भी लिया गया कि तीर्थयात्रियों को यही 2 से 2:30 बजे के बीच में जब उन्हें रवाना कर दिया जाता है तो उनके लिए भी आसानी रहती है, जल्द से जल्द वो

7 बजे से पहले आपको जम्मू से जाने की इजाजत नहीं होती थी, सुबह 7 बजे से पहले स्थानीय जो ट्रैफिक है, और यहाँ कश्मीर से 11 बजे के बाद जाने की इजाजत होती थी स्थानीय ट्रैफिक को। तो रोज रोज चेंज तो की जाती है क्योंकि स्थानीय ट्रैफिक को भी चलाना है, पर्यटन को भी देखना है, कश्मीर की तरफ पर्यटन भी, पर्यटक से जुड़े जो श्रद्धालु हैं वो भी पहुंच रहे हैं, तो उस वजह से चेंज भी आती है, और जिसकी वजह से वो सिर्फ चेंज इस वजह से होती है क्योंकि जो श्रद्धालु हैं उनको आसानी दी से उनको न सिर्फ जम्मू लाया जाए बल्कि जो रवानगी होती है यहाँ से जम्मू से श्रीनगर की तरफ बाबा बर्फानी के द्वार की तरफ उनको भी आसानी के

0: हैं जिनकी ड्यूटी है, जो एक एक कागज का चेक करते हैं, उसके बाद ही जाने की अनुमति देते हैं। और जो तीर्थ स्थान है, ये अपना भगवती नगर का जो निवास स्थान पहला है, वहां पर श्रद्धालु जो है वो वहां पर वही पहुंचेगा जिनके पास पूर्ण तरीके से अपने दस्तावेज पूरे होंगे, उन्हें ही वहां भेजा जाता है, उनकी ही वहां ट्रेनिंग, और वही सुबह फिर रोजाना रवाना होते हैं। ट्रांजिट
1: जी
0: कैंप से उनको वहां भेजा जाता है।

विशेष प्रसारण अमरनाथ जी यात्रा 2026 का FM बालतल, FM पहलगाम, DTH और न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप, आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए।

कर चुके हैं। आपको बता दें कि आईएमडी ने जम्मू डिवीजन में तेजी से बदलते मौसम और वर्षा का अलर्ट दिया है, हेवी वर्षा का अलर्ट दिया है, बारिश हो सकती है, जिससे नेशनल हाईवे पर असर पड़ सकता है। लेकिन इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का आप पालन करिएगा और जम्मू से चलने वाले इस पूरे बैच को सीआरपीएफ और जेएंडके पुलिस की मल्टीलेयर सिक्योरिटी एस्कॉर्ट के साथ जो है भेजा गया है, जो बिना किसी परेशानी के रामबन के चंद्रकोट स्ट्रेच को क्रॉस कर चुके हैं। जी हाँ, ये आप तक हम जम्मू के हवाले से बात इंफॉर्मेशन जो है पहुंचा रहे थे। आप बने रहिए हमारे संग, एफएम बालतल, एफएम पहलगाम के संग।

अभी भी बोली जाती है। अगर आप जम्मू में हैं और आप जम्मू घूमना चाहते हैं तो कुछ जगहें हैं जहां पर आप जा सकते हैं और जम्मू शहर का आनंद उठा सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आप रघुनाथ मंदिर जो है वो देख सकते हैं। ये शहर के बीचों बीच स्थित एक बेहद पवित्र और बड़ा मंदिर है जिसे महाराजा गुलाब सिंह ने शुरू करवाया था। इसके साथ साथ आप बहु फोर्ट और बागे बहु जिसे कहा जाता है वो भी देख सकते हैं। तवी नदी के दूसरे किनारे पर एक पुराना किला है जिसके अंदर माता काली का मशहूर मंदिर है। इसके पास ही एक खूबसूरत बाग है जिसे बागे बहु भी कहते हैं। इसके साथ साथ आप मुबारक मंडी पैलेस जो हैं वो भी देख सकते हैं। ये डोगरा राजाओं का पुराना महल है जो अपनी शानदार आर्किटेक्चर और मुगल

में इस समय तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। लगातार वर्षा से हुए नुकसान को मद्देनजर पाएगा मार्ग पर मरम्मत और पुनर्निर्माण का क्रिया जारी है, तेजी से जारी है, जिसके कारण ये मार्ग फिलहाल आरजी तौर पे आज भी बंद रखा गया है। इस समय श्री अमरनाथ जी यात्रा श्री बागटन मार्ग से सुचारू रूप से जारी है। इसी को चलते जम्मू के भगवती नगर आधार शेवर से 83 छोटी बड़ी वाहनों में पर मुश्तमिल 1795 श्रद्धालुओं का एक नया जथा बागटन मार्ग पहुंच चुका है। इस जथे में 1406 पुरुष और 389 महिलाएं शामिल है। सत्तावन दिनों की इस यात्रा के दौरान जो का आगाज जब

में बक्सा भी आता है बीच में, पहले 16 किलोमीटर का सफर के बाद ही उनका सफर शुरू होता है। पहले उन्होंने रात रुकते हैं, फिर उसके बाद चंद्रमारी पहुँच कर उसके बाद शिशना वो परिस्थल निगम की रात्रि होती है, रात के आम होता है। तो सुबह जब निकलते हैं 16 और 9 के दरमियान ये 19 किलोमीटर का सफर बन जाता है। तो उस तरीके से उनको दो वक्त मिलते हैं, तो इसमें कोई बुजुर्गों की परेशानी नहीं। लेकिन अलबत्त ये जरूरी है कि घोड़ेबाल और ये जो दिल्ली वाले हैं वो भी इनकी सहायता के लिए हमेशा वहां खड़े होते हैं, बल्कि ज्यादा होते हैं। तो उसकी डिफरेंस वैल्यू होती है, जो वाले की 4,000 से लेकर 5,000 तक, ये भी वो सरकारी तौर पर उनसे कहा गया, जो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन वो सरकारी तौर पर उनके साथ डील किया गया है कि किस दिन कौन सी रेट हो सकती है। इसी तरीके से घोड़ेबालों की भी एक रेट होती है, जो 2 दिन अपना सफर कंटिन्यू रखते हैं 4,000 5,000 तक, वो अपना घोड़ा जो है

ने ट्रैक मेंटेनेंस और रेल डिस्ट्रेसिंग के चलते बानीहल से बारामुल्ला के बीच ट्रेन सर्विस को फिलहाल सस्पेंड किया हुआ है। इस रेलवे क्लोजर की वजह से लोकल लोगों और उन यात्रियों का लोड हाईवे पर बढ़ गया है जो ट्रेन से श्रीनगर जाना चाहते थे। अब सभी लोग रोड ट्रांसपोर्ट पर ही निर्भर हैं। आपको बता दें कि हाल ही में DDC रामबन और सीनियर ऑफिसर्स ने लांबर यात्री निवास बानीहल का दौरा किया।

है जिसमें केसर, बादाम और इलायची डालकर पिया जाता है और ये शरीर को गर्म रखता है। नून चाय की अगर बात करें, ये एक नमकीन गुलाबी चाय होती है जिसे लोकल लोग जो है, हम लोकल कश्मीरी जो है वो सुबह शाम लोकल ब्रेड के साथ पीते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ खरीदने के लिए कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ के लोकल चीज़ें हैं, आप शॉपिंग

अब या डॉक्टर से जो है वो मिले आप। ऊंचाई पर स्मोकिंग और अल्कोहल पीने से शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफ़ी तेज़ी से गिरता है, इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। कश्मीर का मौसम पहाड़ों में काफ़ी तेज़ी से बदलता है, हमेशा लेयर्स में कपड़े पहने, जैसे थर्मल इनर टी शर्ट, फ्लीस जैकेट और विंड चीटर, ताकि धूप या ठंड के मुताबिक आप कपड़े उतार या पहन सकें। मॉनसून सीजन में पहाड़ों में कभी भी तेज़ बारिश शुरू हो सकती है, अपने पास एक अच्छा रेन कोट या छाता जो है वो ज़रूर साथ रखें। और इसके साथ साथ आप नॉर्मल स्लीपर्स या फ्लैट शूज़ वगैरह जो है वो उनका उपयोग बिल्कुल ना करें, अपने आप सिर्फ़ और सिर्फ रबर ग्रिप वाले या वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज़ जो हैं उनका ही इस्तेमाल करें। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट द्वारा मिला RFID ट्रैकिंग कार्ड हर वक्त अपने गले में पहन कर रखें। इसके बिना ट्रैक्स पर एंट्री नहीं मिलती है, और कश्मीर में बाहर के स्टेट्स के जो प्रीपेड सिम कार्ड्स हैं वो काम नहीं करते हैं, यहाँ सिर्फ पोस्ट पेड सिम ही चलते हैं। अपने साथ एक पोस्ट पेड सिम जो है वो ज़रूर रखें। इसके साथ साथ अपने साथ ओरिजिनल आधार कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट वगैरह जो है हमेशा कैरी करें, क्योंकि सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पर वेरिफिकेशन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, और प्रशासन द्वारा जो भी

सत चेत आनंद स्वरूप, देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल, नाथों के नाथ अमरनाथ, बाबा बर्फानी के इस पावन धाम में मंगल

गीता जी में ऐसा वर्णन है कि जो भगवान को तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से बसते हैं, प्यार से प्रीति से बसते हैं, भाव से बसते हैं, उनको भगवान एक ऐसी बुद्धि देते हैं, ऐसा विवेक देते हैं, उस विवेक के माध्यम से व्यक्ति को यह बोध हो जाता है कि मेरा सही मार्ग क्या है, मैंने जीवन में करना क्या है और मेरा कल्याण कैसे होगा, वो भगवान उसको दे देते हैं। पर एक ही शर्त रखी गई है कि तेषाम सतत युक्ता नाम, निरंतर प्रेम से भजन करते रहे तो आपको वह ज्ञान आपके भीतर प्रकट हो जाएगा। और जब वह विद्या, जब वह ज्ञान प्रकट हो जाएगा और विद्या या सा विमुक्ता है, और वह विद्या आपको मुक्ति की ओर ले जाएगी, ले जाएगी कल्याण की ओर ले जाएगी, आपका मंगल कर देगी। बोले शंकर भगवान। तो प्रेम पूर्वक भजन करो, भाव से भजन करो, निश्चित ही कल्याण होगा और आप साधु बन जाएंगे। तो साधु बाबा के भक्त हो जाते हैं जो बाबा को बसते हैं। तो बंधुओं, साधु क्या क्या है, जो

लाएं। और भी अन्य अन्य गुण जो है साधु में होने चाहिए, उद्देश्य का उसे पता होना चाहिए, कारुण्य भाव उसमें होना चाहिए। दूसरों के दुख को देखकर वह यदि दुखी होता है तो वह साधु है। तो इसलिए बाबा के जो धाम में आते हैं, बाबा ऐसी कृपा करते हैं, ऐसे गुण उनमें स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। वह व्यक्ति गृहस्थी में रहता हुआ भी साधु भाव को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान।

0: भवानि च पुष्पाञ्जलि रमया दत्त गृहाण परमेश्वर
1: श्री अमरनाथाय नमः
0: चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि
1: भोले बाबा की आदि परिक्रमा करेंगे ओम जय
0: तीर्थानि प्रजरन्ति त्रिगाः तानि गङ्गिणः ते गागुंसात्रयोजने वदन्तानि तन्मसि।
1: तो आइए सभी भक्तजन एक साथ बाबा की स्तुति करें। भोले शंकर।

गंगा पार होने के पश्चात भगवान प्रसन्न भाव से केवट को विदा कर भारद्वाज आश्रम संगम नगरी पहुंचते हैं, जहां राम, सीता, लक्ष्मण व भक्तगण

भरद्वाज आश्रम से भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां कुछ आदिवासी स्त्रियां मिलती हैं और सीता से प्रश्न करती हैं। सीता जी लजा कर कुछ इस तरह कह उठती हैं।

राम जी की आंखें भर आती हैं और अपनी खड़ाऊ भरत जी को देते हुए अयोध्या की गद्दी संभालने के लिए वचन लेते हुए विदा करते हैं।

और भगवान शिव ने पूरे भारतवर्ष में 12 जगह अपने प्रकाश को, अपने स्वरूप को ज्योतिर्मय के रूप में रखा। आइए एक श्लोक के माध्यम से द्वादश ज्योतिर्लिंगों के बारे में सुनते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्या महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम।

0: सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
1: ओम नमः शिवाय। इस कार्यक्रम में अभी आप श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुन रहे थे।

मां प्रथम स्वरूप शैलपुत्री छे। आ शैलपुत्री पार्वती देवी छे। शैल पर्वतोना अधिराज हिमालयना पुत्रीनु पार्वती नाम छे, ये तो जाणीतुं छे। अने ए पार्वती शैलपुत्री, गिरिराज हिमालयना आ पुत्री पार्वती देवी जो कि सौना अधीश्वरी छे, तो पण हिमालयनी तपश्चर्या अने प्रार्थनाथी प्रसन्न थईने तेमना पुत्री तरीके प्रगट थया।